0: रोजी, तुम्बा, अब सुबह का नाश्ता हो गया है, अब पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं।
1: हाँ माँ।
2: माँ, आज तो सबसे मजेदार वाली पढ़ाई करेंगे।
0: हाँ, मजेदार मतलब जिसमें हंसना और रोना दोनों ही शामिल होना चाहिए, है
2: जी
0: ना?
2: माँ।
0: फिर तोम्बा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पुस्तक में विविध प्रकार के पाठ होते हैं और तुम भी अलग-अलग विषय पढ़ते हो, जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस आदि। ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें हमेशा मज़ेदार कहानी नहीं होती, फिर भी हम इन्हें पढ़ते हैं। इसलिए सिर्फ मज़ेदार कहानी ही नहीं पढ़ाई जा सकती। स्कूल में तुम्हारे मास्टर जी जो पढ़ाते हैं, उसे ठीक से समझना और उसमें भी मज़ा लेना चाहिए। तुम्हारी दीदी से पूछती हूँ, रोजी,
1: जी माँ।
0: तुम बताओ कौन सा पाठ पढ़ाया जाए?
1: माँ, मिजोरम के लोगों के नृत्य के बारे में पढ़ाइए।
0: अरे, वो तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। किसी जाति की परंपरा और संस्कृति के बारे में है।
2: माँ, बहुत मजा आएगा।
0: तुम विद्यार्थियों को किसी भी विषय के बारे में अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए और अनुसंधान में भी आनंद लेना चाहिए।
1: सुनाइए माँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
0: तो सुनो, तुम दोनों,
2: जी माँ।
0: सबसे पहले मिजोरम के बारे में बताती हूँ। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है। इसका क्षेत्रफल 23,980 वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन काल में मिजोरम को लूसाई हिल्स कहा जाता था।
2: अच्छा।
0: यहाँ लूसाई, राल्ते, मार, पावी, पंग, लखेर, रियांग आदि प्रमुख जनजातियों के लोग रहते हैं।
2: माँ, क्या
0: हाँ
2: मिजोरम में कोई प्रसिद्ध चीज या स्थान है?
0: हाँ बहुत है। यहाँ कई दुर्लभ पक्षी और जानवर मिलते हैं। जंगली हाथी भी यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं।
2: अच्छा।
0: सबसे सुंदर और मनमोहक दृश्य यहाँ के झरने हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊंचे पहाड़ों से पानी गिर रहा हो। ये
2: वाह।
0: इतना सुंदर होता है कि शब्दों में इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है।
2: माँ, तब तो बहुत सुंदर होगा। मुझे
0: हाँ
2: तो देखने का मन हो रहा है माँ।
0: हाँ तुम तो मजेदार कहानी सुनना चाहते थे ना? बताओ,
2: मुझे क्या पता, अब तो ये भी मजेदार बन गई।
0: तुम्हारी दीदी भी बड़े मजे से सुन रही है। आगे सुनो।
1: माँ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मिजोरम

0: इतना सुंदर है तो वहां पर्यटक भी बहुत आते होंगे। वे लोग कहाँ रहते होंगे?
1: हाँ, मिजोरम में पर्यटक भी बहुत आते हैं। उनके रहने के लिए सरकार ने अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस बना रखे हैं।
0: वहां के लोग कौन सा धर्म मानते हैं?
1: वहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म मानते हैं। बुद्ध धर्म मानने वाले लोग भी हैं।
2: माँ,
1: बोलो।
2: वो मुख्य रूप से कौन सा भोजन खाते हैं?
1: वे लोग भी हमारी तरह चावल ही खाते हैं। पहाड़ी स्थान होने के बावजूद वहाँ खेती बारी अच्छी होती है। ये मुख्य रूप से झूम खेती पर आधारित है। वो चावल और अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। पहाड़ी जगह होने के कारण वहाँ रहना भी काफी सुखद लगता है।
0: माँ, पहाड़ी जगह है तो वहां ज्यादा खेत तो नहीं होंगे, तो वे खेती कहाँ करते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। वो लोग जंगल काटकर और पहाड़ी ढलानों को साफ करके खेती के लिए भूमि तैयार करते हैं। रोजी के पापा,
2: हाँ, बताओ।
1: बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठिएगा, मैं रसोई में जा रही हूँ।
2: ठीक है, कहाँ तक पढ़ाया?
1: मिजोरम की खेती तक पढ़ाया है। बच्चों, मैं घर का काम देख रही हूँ, तुम लोग पापा के साथ पढ़ लो। जो भी पूछना है पापा से पूछ लेना।
0: जी माँ। पापा, मिजोरम में मिलने वाले कुछ अनाजों के नाम बताइए।
2: ठीक है बेटी, मिजोरम में मिलने वाले कुछ अनाजों के नाम बताता हूँ।
0: जी पापा।
2: चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला अनाज है,
0: अच्छा,
2: इसलिए मिजोरम का मुख्य भोजन चावल है।
0: ओ,
2: इसके अलावा हरी सब्जियां, अंगूर, सेब, संतरा, नींबू और अनानास भी वहां पर्याप्त मात्रा में उगाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: इन फलों को बाहर भेजना आय का एक मुख्य साधन है।
0: ओ,
2: वो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं और नाच गान भी पसंद करते हैं।
0: पापा, मिजोरम के लोक नृत्य के बारे में भी बताइए।
2: मिजोरम के लोग नृत्य और गान में विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ अनेक लोक नृत्य प्रचलित है। चिरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे बांस नृत्य यानी अंग्रेजी में बेम्बू डांस भी कहते हैं।
0: ओह, बेम्बू डांस मैंने देखा है।
2: हाँ, इसमें युवा लड़के लड़कियां बांस पकड़कर सामने बैठते हैं और संगीत की ताल पर बांस टकराते हैं। दूसरे नर्तक इसके बीच कूदते हुए नृत्य करते हैं।
3: पापा, मैंने इसे स्कूल के स्थापना दिवस पर देखा है। मैं इस नृत्य को जानता हूँ। इस नृत्य में लोग उछल उछल कर नाचते हैं।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत अच्छी तरह से जानता है।
0: और बताइए पापा।
2: सोलकी नृत्य भी प्रचलित है। इसमें युवा एक पंक्ति में खड़े होते हैं और ढोल की धुन पर धीरे धीरे पैर उठाकर लहराते हैं, फिर जमीन पर लाते हैं और आगे पीछे कदम बढ़ाते हुए नृत्य करते हैं।
3: पापा, और भी नृत्य है क्या?
2: हाँ, और भी बहुत सुंदर नृत्य है। वे लोग नृत्य करते समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। ख्वांगशा नृत्य किसी भोज के अवसर पर होता है।
3: अच्छा,
2: इसमें नाच दल गांव के रास्ते पर नाचते हुए चलते हैं।
0: पापा, वो तो देखने में अलग तरीके से बहुत रोचक होगा। और भी है क्या पापा?
2: हाँ, और भी है। मिजोरम का सबसे लोकप्रिय नृत्य ख्वालम है। इसे जीवन भर खुश रहने की कामना से किया जाता है। कहा जाता है कि इस नृत्य को 7 बार विशेष अवसरों पर करने वाला स्वर्ग में भी आनंद पाता है।
0: अच्छा, तो पापा, मिजोरम के लोक नृत्य तो बहुत ऊंचे स्थान के नृत्य हैं।
2: हाँ सही कहा तुमने रोजी, जब तुम लोग आगे जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तब सुंदर सुंदर देशों के बारे में और जान पाओगे।
0: जी पापा।
3: आगे सुनाइए पापा, मुझे और सुनना है।
2: हाँ हाँ बताता हूँ। मिजोरम में चेराओ, पाखुलिया आदि लोक नृत्य बहुत प्रचलित है। ये सभी बहुत रोचक और सुंदर होते हैं। लोक नृत्य आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। इनसे हमें जीने का उत्साह मिलता है।
0: पापा, मिजोरम के लोक नृत्य तो ऐसा लगता है जैसे अंदर एक सुंदर सी धारा बह रही हो।
2: सही कह रही हो तुम रोजी। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, कल एक नई कहानी पढ़ाएंगे।
3: जी पापा।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आस्का प्रश्न है मिजोरम के लोग मुख्य रूप से कौन सा भोजन करते हैं और उनकी खेती किस पर आधारित है फिर से सुनिए मिजोरम के लोग मुख्य रूप से कौन सा भोजन करते हैं और उनकी खेती किस पर आधारित है
0: ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMSꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ
2: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 145 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ 15 ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ

आकाशवाणी इंफाल हौजी अमुक तामिनसे हैखाम लोकेंद्रो की खोंजेल दा थौनाउजम श्यामोना सैरेंगबा मतमी सेमा

आकाशवाणी इम्फाल गी रेडियो गी थरुम सिंगबु नुंगाइना ताजदुना अवा पोथाजरी गुड मॉर्निंग आरजेएमएम मतमिसे मत ताजगे असुमना हौदो पिरकने खैदा बिदुना खनबिरकलिबो इसे एसिबु सैसकलिबो असेम अमरजीत सैरेंगबो नरेंद्र निंगोमबम इसे एसिबु ताजनिंग हाइदुना मेसेज थाबिरकबो मरुप सिंगदे कोंगबदगी कानोनबला कोंगब्राई लाटबम इनाउ मचा शर्मा मणिचंद्र मोयरांगचा बीरचंद्र सोयबम चिरोम बिमोल थोब निथौजम संध्या रानी थांगजम चंचन निथौजा नाउरेम गीता रेडियो ताबिरिबसिंगा पुन्न तामिनजेगे असुमनसु इबिरकले खौरांग नंगाइजेरी अरोइबदसु हापिरकले मरुपना खौरांगना ngaijaba isei मरुप सिंह पुन्न तामिनसे लानथौजरी

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमदा दो बुतराम नोक चरे। गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: हेलो ताबी को गुड आफ्टरनून तराम नोक चरे मिंग लाइफ हम फोंग तो पियो
1: सिंजमाई देगी ने
0: होय सिंजमाई देगी मिंग ताबी
1: सिंजमाई चिरोम लगा है चिरोम चाउबी
0: चाउबी होय चाउबी नुंगाई बिरी ब्रा कम दो बिरी
1: नुंगाई बिरी आई बी एन सी ना हाँ बने
0: ओ आई कोई की थौरमदा सरुक याबिरकपसे अहानबने हाइबसे ताबदे आमनु ताबदे आमनु ngaije khoi ga nau bo maru ama so thengna jaw
1: ya mai mai ka ge ye so phang phang da ba
0: o hoi hoi
1: mati na si ju la ki da
0: hoi nga si yamna daw ya ba haiba ta re ko daw yam ya bo re do ahan bo phang basi da yamna phajaba wa khalol so inda na phung dok piram gani kanje karam bo wa khalol na phung dok pio
1: ai hai ta la ke
0: hoi hoi ya ni hai pio
1: ꯑꯥ
0: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯈꯣꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯅ ꯊꯧꯅ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯨ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯄꯤꯗꯕꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯟꯗꯣꯏꯁꯨ ꯃꯨꯍꯦꯛ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯊꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯍꯣꯔꯣꯟ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯗꯨ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯊꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯨꯝ ꯑꯗꯣꯝꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯔꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯖꯟꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯡꯖꯟꯖꯔꯅꯤ
0: ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯩ ꯊꯨꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯊꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯇꯣꯝꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯜꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯜꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ
1: ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯝ ꯈꯪꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯌꯦꯛꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯧꯅꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯋꯥꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯝ ꯈꯪꯗꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯠꯊꯕꯗꯤ
0: Apaba aduga santi raiba aduga mara chet palam da mama adumak khana suiri aduga adumak suira kani haiba thaza basiga loinana ehangna kudol tam jariba dineski konjel da jigen running thau jana sairing bai sei se makha tanamuk puna tamina se
1: thank you
0: you're welcome.

0: हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम द थराम नोक चरी।
0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, आई खुंजल से पिक ना ताबी ब्रा ना जगा दुमक सिंग ना ताबी ब्रा।
0: अदम चेंग ना ताजे ये मैम।
1: होय होय, अदुदी मरुप की मिंग अमा दी लाइफम तक पियो।
0: आई नोंग मई का पम तनु जा।
1: होय लाइफम ना।
0: इंगम थोंग जाओ तदी।
1: होय तनु जा तराम नोक चरी। नसी दी अरोय ब कॉलर शोय बि दोइनी अदम ना दुना करम ब वाफम नो फोंदोक पिनिंगी से आइबदो। तें तक ना फोंदोक पियो।
0: मैम आई जाम बन नुंग तो संगी बजाम नुंग आई थे आई बदी हब कई का चेन गद खोद गद फर अम तारे बो मैम
1: होय
0: अदुना सी हाइजगे तो बने मैम कसु थोदोकदि हाइजरो
1: होय यम नुंगाई जाय को तनु जाना कॉल तो बिरागा सरुग या बिरक्पा थागा चरी।

धन्यवाद निलश्री। यह आकाशवाणी इम्फाल का सांगाय चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत है फिल्म अग्निपथ से सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार है मिट्टा भट्टाचार्य और संगीत अजय अतुल का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म गुरु से हरिहरन, अलका याग्निक और ए आर रहमान की आवाजों में। गीतकार है गुलजार और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म ओंकारा से श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज का गाया गीत। गीतकार है गुलजार और संगीत विशाल भारद्वाज का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म रॉकस्टार से कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ में, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का।

साथियों इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है नीलश्री हैसनाम अब हमें दीजिए इजाजत नमस्कार

0: Western music ki thoram tabire akaswani imphal hausik nungthil gi pung ahum tarak pagaloina na manipuri da pau tabirasi
1: akaswani imphal ngangbom ngantoina pau pajari NRC taudringai da mikok thibagi thabak sathaba yaroi haibadabi da campaign for justice and fair delimitation JFD na kauba general strike na miyam gi mahousa gi punsi da sauna pan bathokle general strike asina maram oiduna imphal gi khwaramban kaithel yauna maru oiba kaithel sing phamna dre lambi da gari satpagi sang nemle school college sing kana dre dukan sing thonglo le jila amaga phongna ba gari sing sendre tampaki mafong kya da miyam thoraktuna lambi thingbagi khongjang sangsili Kukizo khulsing mai thadokpa amasung IT road ki en taikhang khulda miyoi ahum halamba kayamana sopan nanglambagi thongbu yaningdaba phongdoktuna Committee on Tribal Unity ko tu Sadar Hills na National Highway tu Imphal Dimapur lambi thingjinbagi khongjang sangsin khre ko tu gi serolaman hai National Highway tu total shutdown ase ngasi ayuk pung manga dagi horuga hyang ayuk ki pung manga phawbu chathagani shutdown manung da mahi tampham sangsing medical fire service bank amsung electricity vibhakti council loi pradhanmantri narendra modi na kyrgyzstan gi konung biskek ta pangthok liba kuntaruk suba shanghai cooperation organization sio gi mipham da ngasi wangangani mipham ase shanghai cooperation organization sem khibagi kunmanga suba kumon thorong mari lenena pangthok pani kuntaruk suba sio gi mipham ase together for sustainable peace development and prosperity haiba moto da pangthok pani Kyrgyzstan gi khongjak ki ahan banu mitang rang pradhan mantri na Mahatma Gandhi gi mitam da laikat ki amasung taruk subo world nomad games haudopogi tharum da sar uya ki pradhan mantri na Russia gi rashtrapati Vladimir Putin ga su unaduna loiba naidraba lan loisinabi matang da wafung kya khana ki Iran Kyrgyz Republic amasung Armenia gi lusing basing ga pradhan mantri ga unaduna Bharat ke laibak sing asi ga lainari ba mari gi matang da wafung kya khana ki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी भारत की सेनमिलोन दा हाना की फिवम दगी सादा तरे दशमिक निपान हेंगले मसी लेबासी की नागरिक कोती सामनी फुना पुना होना मिना बदगी ओरक पनी सोशल मीडिया दा थगलक पर वीडियो की वारोल अमदा श्री मोदी ने हाई मालिम के तय लेबाक सिंह दा हुजिक थोकली बल्लान अमदी कोविड 19 मतम दा अवाब कया थेंग नगर फजो हुजिक ती लेबासी चौखट पगी लमदा खोंगजल यांग नचंगसिली फिवम असी कहेंदन थमगे हैरबदी आत्मनिर्भर भारत ओहेन बतंगाई फदे हाइना प्रधानमंत्री ने फोंदोकली इंडियन रेलवेज ना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन गि नोंगजुप थंग बरे लंबी सेमगनबा लुपा कोटी सा महमुद्रा काइथोकले रेलवे मंत्रालय ने हाइरी खोंगथांग असिना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम सिजन दुना मफम असि गि रेल लंबी गि सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फगर हलगनी अमरोम द इंडियन रेलवेज ना बिहार गि समस्तीपुर डिवीजन गि स्टेशन कुनमाथोइदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सेमगनबा लुपा कोटी सनी कुनथ्रा होम द काइथोकले कंप्यूटर बेस्ड ओइबा सिस्टम असिना साथोक सिन तौरिबा पैसेंजर सिंग द हेना खुदोंग चाहल लगनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री जेपी नदाना स्वास्थ्य पखवारा लिसिंगनी कुनतरुक नसी हौदोखरे सयोल अनिसुम न चथगदबा थरमसी सिंगल यूज प्लास्टिक सिंग थिंगना बामसुंग फीना साबा खाउसिंग अमदी अमुक हन्ना सीजन अब याब बोतल सिंग सीजन हन्ना बा मियाम द खंग हन्ना बा पांगथोक पनी केंद्र के एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अमसुंग क्लाइमेट चेंज की मंत्री भूपेंद्र यादव का महाकप हम माना बा जर्मनी की कार्स्टेन स्नाइडर का न्यू दिल्ली दंगसी उनकरे मरी सुबह इंडो जर्मन एनवायरनमेंट फोरम की सरुक अम ओइन पांगथोक की बा मिफम अदुदा लुसिंग बा अनिना इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन याउना अकोइबगी फिवम निंगथिने योखतुना थामनाबा अमदी पाच सिंगी फिवम फगरहनबगी मतांगदा वाफम क्या खनखि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ना मसागी पोर्टल दा फ्री सेल एंड कमर्स सर्टिफिकेट एफएससी पिननबगी आयाब पिखरे कमर्स समसु इंडस्ट्री मंत्रालय ने हाई सर्टिफिकेट सिंग असे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गी मखादा मपानलम दा पोसै थादोक थाजिन तौरी बललोलितिक तौरी बमयै सिंगी दमक पिबनी DZFT ki portal da automated mechanism oina puthokliba FSC asina lalolitik tawriba miyoi singna register tawba matam da hena lai hilagani India Meteorological Department na Chhattisgarh gi mafam kya dang asi nongkana chugani haina red alert lawthokrei bibhag asina hai awang nongpok bharat ki mapham sing yauna bihar urisha himachal pradesh uttar pradesh jharkhand uttarakhand gi mapham kya dang si nongkana churabai hairi pauloi jare

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंगफो मसिद मुगलान थुकचरी रेडियो क्लास चमरी हुमद्रा तरुक सुबह तांकता क्लास सिक्स की हिंदी सब्जेक्ट की लेसन नंबर 17 हरिबी समग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ए समग्र शिक्षा मणिपुर पुथोपनी लैजरे रेडियो क्लास चमरी हुमद्रा तरुक सुबह तांकता।

0: माँ, ओ माँ।
1: क्या हुआ हरी? अरे क्या हुआ, क्यों बार बार बुला रहे हो?
0: माँ, काम हो गया क्या? मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर दीजिए ना।
1: हाँ, हो गया है, अब पढ़ना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ।
2: माँ, आज तो रविवार है, आज हमें थोड़ी और पढ़ाइए।
1: अच्छा, हाँ, बताओ कौन सा पाठ पढ़ना है, उसका नाम तो बताओ।
0: जी माँ, मणिपुर के निवासी नाम का पाठ है, इसके बारे में हमें समझाइए।
1: मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा राज्य है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है,
0: अच्छा,
1: इसलिए कवियों ने इसे मणि का देश यानी मणिपुर कहा है। मणिपुर में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं।
0: अच्छा,
1: यहाँ के प्रमुख मूल निवासी हैं मीतेई, तांगखुल, माओ, कबुई, मार, पाइते, मरिंग, अनाल, थादौ और पांगल। इन सब की अपनी अलग रीति रिवाज, परंपराएं और धर्म होती है।
0: अच्छा
2: माँ,
1: हाँ
2: मितई यानी हम है क्या?
1: हाँ बेटी, हम मितई हैं। मितई मणिपुर की सबसे बड़ी जाति है। यहाँ सभी जातियों में मितई जाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: माँ, मितई
1: बोलो।
0: जाति के लोग कौन-कौन से धर्म मानते हैं?
1: मितई जाति के अधिकतर लोग गौरिया संप्रदाय को मानते हैं। कुछ लोग अपना पारंपरिक मितई धर्म का भी पालन करते हैं।
0: माँ,
1: हाँ, बोलो।
0: जनजातियाँ और पांगल लोग कौन से धर्म मानते हैं? इसके बारे में भी हमें बताइए।
1: देखो, ज्यादातर जनजातियां लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि पांगल लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं।
0: अच्छा,
1: और मणिपुर के बाहर के लोग यहाँ के सभी निवासियों को मणिपुरी के नाम से जानते हैं।
2: माँ, मणिपुरी लोग कौन-कौन से पारंपरिक कपड़े पहनते हैं? इसके बारे में भी हमें बताइए।
1: हाँ, तुम्हारा जो प्रश्न है मैं समझ गई। देखो, ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ।
2: जी माँ,
1: घर में रहते समय लोग साधारण कपड़े पहनते हैं। घर में स्त्रियां अधो वस्त्र के रूप में हल्का रंग बिरंगा कपड़ा पहनती हैं, जिसे मणिपुरी में फनेक कहा जाता है।
2: वो तो मुझे पता है।
1: ऊपर के लिए तो वह ब्लाउज और उसके ऊपर चादर ओढ़ती हैं। पुरुषों के कपड़े लगभग हर जगह एक जैसे होते हैं, जैसे अंगोशा या खुदई, पैंट, पजामा, कुर्ता और धोती। शादी विवाह और अन्य धार्मिक अवसरों पर मितई पुरुष सफेद धोती और कुर्ता पहनते हैं।
2: वो तो मैंने देखा है।
1: मणिपुरी स्त्रियों के कपड़े देखकर हमें पता चल जाता है कि वह किस अवसर के लिए जा रही हैं। लेकिन पुरुष अधिकतर सफेद धोती पजामा या कुर्ता पजामा पहनते हैं, इसलिए उनके कपड़े देखकर अवसर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: अच्छा, तो माँ, हमें भी थोड़ा थोड़ा पता है। आप विवाह में जाते समय मपा नाइबा फनेक पहनती है और मोइरांग फिजिन वाली चादर ओढ़ती है ना माँ?
1: हाँ,
2: कान में बड़े बड़े झुमके, कंगन और हार पहनती है। पिताजी सफेद धोती और पजामा यानी कि पुमिया पुमिया पहनते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर जाते समय लोग थोड़ा कम सच धज कर और कम आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां रेशम का फनेक और चादर पहनती है। किसी के शोक प्रकाश के अवसर पर स्त्रियां पुंगो फनेक पहनती हैं और सफेद चादर ओढ़ती है। ये सब हमारे पारंपरिक रीति रिवाज हैं।
0: माँ, पुरुषों के बारे में एक बात रह गई।
1: अच्छा, क्या है वो? अगर तुम्हें पता है तो बताओ।
0: हाँ माँ, पिताजी दफ्तर जाते समय लॉन्ग पैंट पहनते हैं और अन्य कामों के लिए भी वही पहनते हैं। वो क्यों है माँ?
1: हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इसलिए पुरुषों के कपड़ों से ये बताना मुश्किल होता है कि वह किस अवसर पर जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: जबकि स्त्रियों के कपड़ों से ये आसानी से पता चल जाता है कि वह किस अवसर पर जा रही हैं। इसी से पता चलता है कि मणिपुरी संस्कृति और रीति रिवाज को स्त्रियों ने बड़े ध्यान से संरक्षित कर रखा है।
0: अच्छा।
2: माँ, शादी में जाते समय आप अलग अलग रंग के सुंदर ब्लाउज पहनती है, वो भी है ना?
1: हाँ हाँ बेटी, वो भी है, बिल्कुल सही। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, इसलिए तुम्हें सब याद रहता है। मैंने हर अवसर के लिए अलग अलग कपड़े संभाल कर रखे हैं।
2: माँ, एक दिन एक स्त्री ने आपको फनिक मप्पा नायबा और रेशम की चादर दिखाई थी ना, मैंने भी उसे देखा था।
1: तुम भी ना? हाँ, तुम भी तो समझदार हो रही हो। उन्होंने जो फनेक दिखाई थी वो मणिपुरी स्त्रियों की पसंदीदा फिगे फनेक है।
2: अच्छा।
1: ये बहुत कीमती भी होती है।
2: ओ।
1: चादर भी मणिपुरी स्त्रियों द्वारा बनाई गई बहुत कीमती रेशम की चादर है, जो कई सुंदर रंगों में मिलती है।
0: माँ।
1: हाँ हाँ बोलो।
0: कहा जाता है कि मणिपुर में कई जातियाँ मिलजुल कर रहती है। क्या उनके भी अपने अपने पारंपरिक कपड़े होते हैं?
1: क्यों नहीं, तांखुल जाति के भी अपने पारंपरिक वस्त्र होते हैं।
0: अच्छा।
1: घर में रहते समय और रोजमर्रा के कामों के लिए लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने सांस्कृतिक उत्सव के समय वे अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। ये प्रथा मणिपुर में रहने वाली लगभग सभी जातियों में देखी जा सकती है। मणिपुर में रहने वाली कबुई जनजाति का एक त्योहार गान गाय है।
0: वो तो मुझे पता है।
2: मुझे भी।
1: हाँ, जो धान की कटाई कटने के बाद मनाया जाता है। इस त्योहार में युवक युवती और बुजुर्ग सभी लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं।
0: अच्छा।
1: युवक और युवती एक साथ मिलकर नाच गान करते हैं। इसी तरह मणिपुर में रहने वाली अन्य जातियाँ जनजातियाँ और पांगल लोग भी अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार कपड़े पहनते हैं।
2: माँ।
1: हाँ।
2: मेरी एक मुसलमान सहेली है, उसका नाम है अमीना। उसने कहा है कि ईद उनका बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन बुजुर्ग पुरुष युवक और बच्चे सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, जैसे कुर्ता पजामा, और पुरुष सिर पर सफेद टोपी भी पहनते हैं। स्त्रियां बुर्का नाम का एक बड़ा कपड़ा पहनती है, जिसमें सिर्फ आंखों के लिए छोटी सी जगह खुली रहती है।
1: हाँ, वो उनके पारंपरिक कपड़े हैं। आजकल कुछ लोग थोड़े आधुनिक रूप में सामान्य फनेक और कमीज पहनते हैं और चादर से सिर भी ढक लेते हैं।
2: अच्छा।
1: मुसलमान बालिकाएं स्कूल जाते समय भी सिर ढक कर रखती हैं। वह सिर खुला नहीं रखती।
2: ओ।
1: देखो जॉली, तुम्हारे पिताजी भी आ गए। अब तुम लोग पिताजी के साथ बातचीत कर लेना, मैं अंदर जाकर घर का थोड़ा काम निपटाती हूँ।
2: हाँ माँ। पिताजी। माँ घर

0: आता है कि उनके शासन काल में महिलाओं के सिर को कपड़े से ढकने की प्रथा थी।
1: ओ
0: लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ भी थी कि उनकी ही शासन काल में मणिपुर में स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई थी।
1: अच्छा, तो इसका मतलब लड़कियों के लिए भी स्कूल बने थे?
0: बिल्कुल, महिलाओं के लिए स्कूल बनवाए गए और उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर दिया गया। पहले के समय में महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन चुराचांद महाराज के समय से उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति मिल गई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी।
0: हाँ बेटा, ये सच में ही बहुत अच्छी बात है। आज के समय में भी और भी बड़ा परिवर्तन आ गए हैं।
1: वो कैसे पिताजी?
0: ध्यान से सुनो,
1: जी पिताजी।
0: अब लड़के और लड़कियां दोनों ही बराबर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख कर वे अच्छी सफलता और उन्नति हासिल कर रहे हैं।
1: पिताजी, ये सुनकर बहुत खुशी होती है। आजकल बहुत सी महिलाएं बड़े बड़े पदों पर काम कर रही है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने जोली, हमारे मणिपुर की महिलाएं भी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।
1: अच्छा
0: बेटा, आज के लिए यही समाप्त करते हैं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, ठीक है?
2: जी
1: जी पिताजी,
2: पिताजी, यही समाप्त करते हैं।
1: हाँ, यही समाप्त करते हैं।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का पहला प्रश्न है मणिपुरी महिलाएं अलग अलग प्रकार के पारंपरिक कपड़े क्यों पहनती है फिर से सुनिए मणिपुरी महिलाएं अलग अलग प्रकार के पारंपरिक कपड़े क्यों पहनती है दूसरा प्रश्न किस राजा के शासनकाल में महिलाओं ने पढ़ाई शुरू की थी फिर से सुनिए किस राजा के शासनकाल में महिलाओं ने पढ़ाई शुरू की थी
0: ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 15, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 400 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMSꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯡꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 431ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯉꯥꯂꯩꯕꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯘꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯗꯤꯄꯛ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯆꯅꯨ ꯁꯤꯂꯩꯃ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 432ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯦꯟꯊꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯤꯌꯣꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 432ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯁꯤꯝꯔꯟ ꯗꯦꯕꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯔꯠ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯥꯔꯐꯤꯟ ꯑꯍꯃꯗ ꯅꯣꯡꯁꯥꯏꯕꯝ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯣꯟꯚꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ

0: आकाशवाणी इम्फाल हुजिक नुमिडांगी पुंग मंगा तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसी।
1: आकाशवाणी इम्फाल हुजिक पाउ की मरोय पाउ दा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना हाइरी लमदम से दा लेरीबा मिपुंग खुदिंगमक अमदी मरी लैनबा अथॉरिटी सिंगना अमत्ता ओइना पुनसिंदुना शांति मसुंग हानगी पुनसिदा हंजनना बपुना होना मिनबा तंगाई फदे। सोशल मीडिया दा थागत पुवारो लमदा मुख्यमंत्री नहाय मियाम न बन मसुंग जनरल स्ट्राइक सिंग तोबिगनु मसीना नोमगी सुरग हिंगलीब मियोसिंग दा अवाब मायोक नहली। राजस्थान केदर की आईएएस राजीव सिंह ठाकुर ना मणिपुर की सिप सेक्रेटरी ओइरगनी। कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन ना कौबा जनरल स्ट्राइक ना मियाम की पुनसीदा साउना अपनब थोकले। कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ना कौबा पुंग कुनमरी की शट डाउन हौजिक जथरी मफम कैद स्ट्राइक सौगल्पसिंगना लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हायरी हौजिक मालेम की तोंगान तोंगानब मफम सिंगदा थोकलिब लान असी कनागुंबा अमना पामलिब नत्रगा अमग अमग की मरक्त यानदब लेरबसु मसिना वारोशिन पुरकपंगम लोय। वफम असी कुंतरुक सुब संगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट श्री मोदी ना फोंदोखिबने। केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ना हायरी सरकार ना पाइखलिब साउखा थरांग की स्कीम खुदिम जात बिजात खाइदना लेबा असिद लेरिब मिपुंग खुदिम की याइफनब पाइखतपने। न्यू दिल्ली दंगसी पांगथोपा समाबेस उत्सव तसरुग यारदुना मंत्री ना हाय डी नोटिफाइड नोमेडिक अमसुंग सेमी नोमेडिक ट्राइब से याइफनबगीदमक सरकार से लेप लेतना होनरी। केंद्र की शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ना हायरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइबसी समाज असिद तंगाइफदना संगदब याद्रब हिरम अम ओइरकली। न्यू दिल्ली दा पांगथोपा थोरम अमदा श्री जोशी ना हाय मतंग इरोइनना होंगलब टेक्नोलॉजी का सुनब मोंग दा महिरोय सिंगी लाइरिक अमसुंग करिकुलम सेंगदोक प तंगाई फदे। मसिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पु नहा सिंगना निंथिना खंगलब मतुंग नियम चुमना सिजनब दा मतेंग ओइगनी। अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह हायरी नेपाल दा हौजिक मियोय क्या कनबगी थबक असिदा एसएसबी ना अचोब थौदांग लौरी। एसएसबी जवान सिंगना नेपाल दा इसाउन अमांग ता थोहनख्रब मफम सिंग दा चंगसिनदुना मी कनबगी थबक खोंजेल यांग सथरी। पाउ लोजरे
0: मणिपुरी दमरोय पाउ ताबिरे।

चेबी माँ पली मिसी मिबी मगने नुराई भी मथा दो थोई भी गदी उना की खंकु मुंशीदा ले भी हो रोको ऐशंग घर के देना अंगहांग नोंग्याए खंब दो संशिल लंगले लमदम दो खमल इक्वा

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

0: मथंगदमुक ताबिरेसी आशा भोसले अमदि किशोर कुमार अनिगे पुनबो खंजेलदा गीत
1: क्या ख्याल है आपका

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान. दोस्तों आज का दिन है जश्न का क्योंकि आज एफएम गोल्ड का जन्मदिन है. रेडियो की दुनिया में जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं होता, ये उन तमाम आवाज़ों गीतों और श्रोताओं का उत्सव होता है जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम नहीं रहने दिया बल्कि उसे अपना साथी बना लिया. कभी रसोई में बजता रेडियो, कभी सफ़र में साथ चलता रेडियो, तो कभी देर रात तक जागते हुए सुनाई देती कोई चिरपरिचित आवाज़. रेडियो ने हमारी ज़िंदगी के ना जाने कितने पन्नों पर अपनी संगीतमय धुन लिखी है और एफएम गोल्ड की इस यात्रा में आप श्रोता हमारे सबसे ख़ास साथी हैं. इसे प्यार और साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. चलिए अब सुनते हैं एक सदाबहार नगमा जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने. अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस गीत की बात कर रहे हैं.

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हाजिर होता हूँ छोटे से अंतराल के बाद.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव. सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे. प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, कुछ गीतों के साथ हमारी अपनी कहानियां जुड़ी होती हैं। किसी गीत को सुनकर हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, किसी धुन के साथ दोस्तों की महफिल याद आती है, तो कोई गीत अचानक किसी ऐसे इंसान की याद दिला देता है जिससे मिले हुए शायद बरसों बीत गए हों। यही तो खासियत है गीत और संगीत की। वक्त बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन एक पुराना गीत वही एहसास अपने भीतर संभाल कर रखता है। बस उसे सुनिए और यादों का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो आइए यादों के इसी दरवाजे को एक और सदाबहार गीत के साथ खोलते हैं, शायद आपकी यादें फिर से ताजा हो जाएं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और शमीम है अभी आपके साथ दोस्तों जिंदगी कभी बहुत कुछ देती है और कभी बहुत कुछ सिखाती भी है कभी लगता है कि सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा है और कभी एक छोटा सा मोड़ पूरी कहानी बदल देता है पुराने हिंदी फिल्मी गीतों में जिंदगी की यही खूबसूरती दिखाई देती है इन गीतों ने हमें हंसाया भी है रुलाया भी है और कई बार मुश्किल वक्त में संभाला भी है और शायद इसीलिए ये गीत सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा ही रहे ये गीत फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे और ये हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत अटूट रिश्ता बन गया तो जिंदगी के नाम एक और खूबसूरत सा गीत ये लीजिए आपकी तरफ आ गया

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर संगीत का ये सिलसिला लगातार जारी है और आज जब हम एफएम गोल्ड का जन्मदिन मना रहे हैं तो आपसे एक बात कहना बेहद जरूरी है कि रेडियो की असली पहचान उसकी आवाज से नहीं बल्कि उसके श्रोताओं से होती है। आपने हमें सुना, हम पर भरोसा किया, अपने दिन के कुछ खूबसूरत पल हमारे साथ बांटे और यही रिश्ता रेडियो को खास बनाता है। तो जहां भी हैं, जिस काम में भी व्यस्त हैं, कुछ पल अपने लिए निकालिए और सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि अगला गीत शायद आपको आपके किसी पुराने और बहुत प्यारे पल तक ले जाए। वो गीत ये लीजिए, आप तक आ गया।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस का मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in the areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from August 31 to September 1. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the progress of Watershed Development Component, WDC, PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes, and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification, and sustainable agricultural practices, among others. During review of WDC-PMKSY, the Agriculture Minister called upon the states to ensure speedy implementation of projects and clear and measurable outcomes at the grassroots level. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to student protests mentioned in applications filed by the Centre, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The Apex Court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present in the Jantar Mantar protests as they had serious criminal antecedents. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has crossed 1,000, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सबका स्वागत है. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट. Nifty falls by 25 points. Gross GST collections increased nearly 15% to almost 2 lakh crore rupees in August this year. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ. वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया. कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया. और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आयुष बताऊं आप जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसलकर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़ककर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गंवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 1.4%, while the small-cap 100 index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत आईटीसी 4%, एचसीएल टेक 3.2% और इंफोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,760 advanced, and 236 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर 94.95 पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज अगर हम आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
1: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है, या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है। तो एक कोई मूव, जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
1: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है। और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है, जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो देखा जाए, अगस्त के महीने में काफ़ी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआईज का काफ़ी फ्लो आया है, तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटीमेंट कहूँगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता because of the headwinds.
1: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है.
2: देखिए उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ी बढ़त भी ली थी तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की जैसे

0: मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक 2000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 23,000-24,000 के बीच में मार्केट जब ऊपर जाती है 24,500 के आसपास तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स, और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है, जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स हो, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कंप्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसेलरेट हो या डीप करेक्शन में जाए ऐसा भी नहीं है।
1: ओके डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%, even that did not translate into a clear rally today. What does this tell us about how markets are pricing growth versus risk today?
0: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth, because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments, and GDP is on the basis of our strong fundamentals. But in the long run, both are very correlated, because when GDP grows significantly, like during the last 4-5 years, we observed that GDP is growing more than 7% on an average, either 7.5% on an average, and the markets are also in the same move. Markets are increasing significantly year after year. But in the shorter period, on the day-to-day basis, or weekly movements or the monthly movements, these are not observing each, because as I mentioned to Prachi, that when the markets go up, then they observe the global fundamentals, global uncertainties. When the markets go down, there is some correction because of those negative fundamentals from the global side, then the markets are supported by the domestic fundamentals. Markets don't want to go beyond a line. Markets always remain at a level that this is the level despite the global headwinds. Markets should remain here.
1: Okay, point taken. How important are the FII selling pressure and global fund flows in explaining the recent 3+ week underperformance of the Sensex?
0: I don't see FIIs are that much significant now in the recent years, because our markets are supported by the retail segment and our DIIs majorly. But the FIIs support the rally, but their contribution or their support or our dependency on them is not that much high. Because when the markets go up, markets make new highs, or markets are in the strong bull run, then the FIIs also come to invest in India. So FIIs always look at the opportunities, because they have the hot money. They invest, then they book profit and they go away. Again, they come and they again invest when the market opportunity is there. When there is a great correction, then the FIIs comes to invest in India, because they know about India's story. They know about India's long-term story, that India is a promising growth story. But when when the markets rise, they observe the global uncertainties, then they book profit and...
1: So how do you view the IT's relative outperformance today, and also that of the banking, which is heavily represented in the index? How do rising oil and potential rate path change feed into credit growth, margins and asset quality over the next 2-3 quarters?
0: Mr. Lake, I would say the sectoral movements are always there. When there is a bull run or the bear run, or the markets are stable, the sectors, sometimes the profit booking happens in one sector and the people shift from one to another sector to observe the opportunities existing in that particular sector. But the growth, like the bank credit or the other segments, are very strong. Like recently, bank credit is growing in the double digits. And IIP numbers are also very strong at 6.7% for the month of July. Exports are very strong at 13% during the last 5 months, starting from April to July. 4 months. So this double digit trajectory is indicating a strong growth momentum or the economic momentum in the coming quarters also. So this is the, I believe, fundamental scenario of the Indian economy.
2: Dr. Sharma, jaisa abhi Rajesh ji ne bhi bataya ki auto sector ko lekar ke, usi tarike se banking sector ko lekar ke, jo aaj humne thoda sa usme jo giravat dekhi hai, to iska koi vishesh karan hai ya आप जैसा बता रहे हैं कि बस एक रोटेशन है ये ऐसा, या कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा?
0: कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यूएस में आगे फेडरेट कैसे मूव करता है, वो स्टेबल पॉलिसी स्टांस रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी सम क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर movement in the banking sector or the financial sector, because when they increase the interest rate, then there are expectation that if inflation goes up, then that happens in other countries also.
2: Okay. तो आपके लिहाज से अभी अगर हम एक एक आम निवेशक की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन से ऐसे प्रमुख आपकी नजर में जो हों, जो सेक्टर्स हों, जो क्षेत्र हों जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करना जहां पर समझदारी मानी जाएगी आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीजें जो हैं काफी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: देखिए, वैसे तो प्राची, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया इज अ प्रॉमिसिंग स्टोरी. इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं. सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग part of our growth trajectory.
1: So if we were to look at the geopolitical scenario, if Iranian barrels are further squeezed out of the market, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
0: I think jo the major markets, the major emerging economies are in the major limelight, actually. They are the stakeholders in the buying and selling segment. But the monopolistic powers sometimes use and are in the their vested interests. That is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
2: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है. आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला. डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं. क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
0: जी बिल्कुल प्राची, देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग। और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है। और इसके अलावा जो जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है
2: जी।
0: और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली,
2: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है।
0: हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए
2: जी। जी आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी की गई एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा। उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण पीएमआई अपने दीर्घकालिक औसत 54.2 से नीचे आ गया। कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई। डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि एक रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
0: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है। तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
2: ऊपर है जी।
0: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
1: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 Finance Ministers meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indian

0: Americans living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient. And our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible. Hmm. And this is the effect of effective and meaningful reforms undertaken by the government. Yeah.
2: आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों में है सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई
0: Global crude oil prices rose today as the resumption of fighting between the US and Iran in West Asia renewed fears of supply disruptions. Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if U.S. pressure on Iran intensifies?
1: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
0: Okay.
1: Yep.
2: आगे बढ़ते हैं सराफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 230,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी डॉक्टर शर्मा सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की हम लोगों की तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी
1: देखिए प्राची जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी और फिर वो 4,000 को भी टच किए आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर That will be at around somewhere between 4,500 to 4,700.
2: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें
1: देखिए जो factors हैं वो एक तो buying है strong buying by the central banks and second जो global uncertainties हैं and that create interest for the safe haven लेकिन इसमें fluctuation आती है जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज़ ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से मूव करते हैं लेकिन इसका एवरेज जो रहेगा मैं ये समझता हूं कि $4,500-$4,600 पर ट्राई ऑन्स इस साल में
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए और
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस इन अगस्त दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्स टिल टुमारो गुड बाय
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI नेट पर सम्मेलन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई शहरों में आवासीय इमारतों और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan yesterday. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has chaired a roundtable on ease of doing business to scale India's data center ecosystem in New Delhi. In a social media post, he yesterday said, during the roundtable, there were excellent discussions on streamlining regulations and strengthening digital infrastructure with key stakeholders, including data centers and hyperscalers, cloud providers, power producers, and equipment suppliers. He said that with India's strong growth, digital capabilities, and investor-friendly ecosystem, under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, India aims to become the world's preferred destination for data centers. Department of Food and Public Distribution Secretary Sanjeev Chopra has reviewed the key issues relating to procurement, public distribution, and storage of food grains during the conference of food secretaries of states and union territories in New Delhi. Food secretaries of various states and union territories and officers of the Food Corporation of India attended the meeting. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution yesterday said, following the deliberations, the paddy procurement estimates for the ensuing Kharif marketing season, KMS 2026-27, was fixed at over 708 lakh metric tons. The ministry added that the implementation of improved rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana and other welfare schemes was also reviewed. Nepal's Prime Minister Balindra Shah has stated that the devastating flood that entered Rasuwa through the Bhote Kashi River bordering Tibet last week was due to climate change. In a social media post, he yesterday said, there is no doubt that climate change has caused this disaster, as it has been confirmed that the temperature in the Himalayan region has increased by 1.8 degrees. Shah further said, climate change is a global contribution and disaster response remains a global responsibility. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,050, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. An Indian national was among 12 people killed in the latest Russian attacks on Ukraine, President Volodymyr Zelensky said, as drones and ballistic missiles struck several cities in the Eastern European nation, damaging residential buildings and civilian infrastructure. In badminton, India's leading shuttlers, including Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma, will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Top seed Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also lead India's challenge in men's doubles, with Devika Sehag among the other Indians in action. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. जी हां, रात के इस शांत सफर में हम और आप एक साथ हैं और लेकर हाजिर हूं मैं निशिगंधा, जहां हम करते हैं कुछ बातें दिल की, जो बातें कहने की नहीं बल्कि महसूस करने की होती हैं. और जब किसी की एक मुस्कान याद आ जाती है या फिर किसी की खामोशी जब हमारे दिल को सुकून दे जाती है, तब हमें नगमों की, गीतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है. तो चलिए इस खूबसूरत एहसास के बीच हम और आप सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत नगमे जिसमें दिल की कोई अनकही बात शामिल है. बहुत खूब कहा है किसी ने कि काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा. काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा, हम सफर कोई नहीं दूर ये मंजिल के सिवा. हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, लेकिन एक शोख के हंगामाए महफिल के सिवा. काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, हम सफर कोई नहीं दूरिये मंजिल के सिवा.

दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, जिंदगी बेमजा ना हो जाए, लज्जत इंतजार ही न रहे, कहीं वादा वफा ना हो जाए, कामयाबी ही कामयाबी हो तो ये बंदा खुदा ना हो जाए, दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, जिंदगी बेमजा ना हो जाए।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, जमाने की खुशी से वास्ता क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या। और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धूल का फूल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं निशिगंधा सुरभि के साथ। रात के इस बेहद खूबसूरत पहर में, जी हाँ, हम आपके साथ हैं। और ऐसे ही जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्याल आते ही ये दिल अपने आप मुस्कुराने लगता है। अब चाहे उनसे रोज बात हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी मौजूदगी का एहसास ही काफी होता है। शायद यही तो खूबसूरती है उस चाहत की, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती बल्कि एक प्यार भरी उम्मीद होती है कि सामने वाला जैसे ही उसे याद करता है उसके चेहरे पर एक खुशी और मुस्कुराहट छा जाती है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू अगर दिल नवाज हो जाए, तू अगर दिल नवाज हो जाए, सोज हम रंग साज हो जाए, दिल जो आगाह राज हो जाए, हर हकीकत मजाज हो जाए।

पहुंचने नहीं देते। इंसान चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता जो उसका दिल उससे कहता है, और फिर ऐसे में रह जाती हैं कुछ अधूरी बातें, कुछ अनकहे जज्बात और किसी अपने की याद। और ऐसे में यूं लगता है कि जैसे शायद मजबूर होकर उसने हमें भुला ही दिया हो, जहां चाहत अपनी जगह हो जाती है और मजबूरी उससे बहुत बड़ी। तो चलिए पुरानी बातों को एक बार फिर महसूस करते हैं और हम आप मिलकर सुनते हैं हकीकत फिल्म का ये गीत।

सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई, फूल से खिल गए तसव्वुर में, दिल को छूकर गुजर गया कोई।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात की इस खामोश और खूबसूरत फिजा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि आपके साथ और आज हम एक बार फिर उन तमाम खूबसूरत एहसास की बात करेंगे जिन्हें अक्सर हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन ये दिल चुपचाप उन्हें महसूस करता है। कभी किसी की मुस्कुराहट हमारा पूरा दिन बदल देती है, तो कभी किसी की आवाज़ सुनकर मन को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना काफ़ी देर के बाद मिल गया हो। बात करेंगे दिल की मोहब्बत की और दिल मोहब्बत की इस हेरा फेरी की भी, जहाँ पर कोई पास नहीं होता है लेकिन फिर भी दिल हमारा उसी के पास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम और आप सुनते हैं हेरा फेरी फिल्म से किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इस गीत को।

ये वक्त की हेरा फेरी है और यकीनन वक्त जब पलटता है तो बहुत तरीके से पलट जाता है। जीवन में जब वक्त पलटता है तो कई वादे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, और वहीं कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये दिल उम्र भर याद रखता है, रखना चाहता है। कभी किसी ने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसी करवट बदल ली कि वही आवाज़ सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। इन्हीं अधूरे वादों और पुरानी यादों को जब बैठकर महसूस करते हैं तब दिल-ओ-दिमाग में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना बजने लगता है।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगला गीत लेकर आए हैं आपके लिए, फिल्म है पत्थर के सनम, मुकेश साहब की आवाज। बहुत खूबसूरत कहा किसी ने कि वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, एक जज्बा ए जुनू ए असर दे गए मुझे। हर सिमत देखती है जो उनके जमाल को, लुत्फ़े हयात इश्क मगर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे।

0: के दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, साथ आया है तुम्हारे जो तुम्हारे घर से, अपने माथे से हटा दो ये चमकता हुआ ताज, फेंक दो जिस्म से किरणों का सुनहरी जेवर, तुम तन्हा मेरे गमखाने में आ सकती हो, एक मुद्दत से तुम्हारे लिए ही रखा है मेरे जलते हुए सीने का दहकता हुआ चांद, मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, जो साथ आया है तुम्हारे तुम्हारे घर से।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अनामिका फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे, इस दिल में जरा तुम बैठो तो कुछ हाल हमारा पूछो तो, हम सादा दिल हैं अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। और इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक, हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। और इसी के साथ दोस्तों आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक हांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल हांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात के 2:11 और 22 सेकेंड। चलिए आगाज करते हैं रात सुरमई प्रोग्राम का और आपको सुनवाते हैं आवारगी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज साहब ने।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, अपनी कहां है जैसे उधारी है जिंदगी। आवाज मुझको ना दे ए गुजरे वक्त सुन, मुश्किल से हमने अपनी सवारी है जिंदगी। कोई खुशी भी पहलू में आई कभी नहीं, मेरी नजर में अब भी कंवारी है जिंदगी। हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, कितनी ये बदनसीब बेचारी है जिंदगी। दुनिया में हमने यूं भी गुजारी है जिंदगी, अपनी कहां है जैसे उधारी है जिंदगी।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हर एक दर्द को हर्फ गजल बना दूंगा, हर एक दर्द को हर्फ गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। गमे हयात में भी मेरे साथ साथ ही रहना, पयंबरी से तेरा सिलसिला मिला दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा। हर एक दर्द को हर्फ़ गजल बना दूंगा, अगर वहां भी तेरी आहटें न सुन पाऊं, अगर वहां भी तेरी आहटें न सुन पाऊं, तो आरजू की बस्तियां जला दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं, चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं, तुम्हारे शहर में कितने हंसी आज़ार मिलते हैं। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम, मेरी तारीख रातों को बहुत गमखार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हंसी आज़ार मिलते हैं, चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं।

एक बार हम उसके हो जाएं, वो हमारा हुआ हुआ ना हुआ। एक बार हम उसके हो जाएं, वो हमारा हुआ हुआ ना हुआ। ढूंढता हूँ मैं हर नफस उसको, एक नफस मुझसे जो जुदा ना हुआ। एक बार हम उसके हो जाएं, वो हमारा हुआ हुआ हुआ ना हुआ।

और चलिए रात सुरमई प्रोग्राम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अंदाज अपना अपना फिल्म के इस गाने के साथ, जैसे गाया है आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए

0: कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की चार दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:17। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

पहली मुलाकात से सजा ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में साथियों ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दो दिलों की दास्तान। साथियों युगल गीतों को सुनने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही बातें होती हैं, अलग ही गुफ्तगू अंदाज होता है इन गीतों में। मित्रों हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में ढलता है, सजता है, तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना जी और वाणी जयराम की आवाज उसी सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों परिणय फिल्म से ये गीत था 1974 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी साथियों जयदेव का संगीत था नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी साथियों साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अहम अंग बन जाता है इसी खूबसूरत बानगी से सजा ये गीत आपको सुनवाते हैं

जी हाँ, शिकवे शिकायतें हों, जीने का मजा और भी आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम रूठने की कोशिश खुद ब खुद करते रहें और कोई हमें मनाने ही ना आए। जी हाँ, बात दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। अव्वल तो ये रूठने मनाने का सिलसिला हमें तो लगता है होना ही नहीं चाहिए, और हो तो भाई जल्द से जल्द मान भी जाएं और रूठें ना, ये ज़रूर कोशिश करें। फिलहाल ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजा, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आस का पंछी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। साथियों, हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें यकीनन बेचैन कर देती है।

ओपी नैयर का संगीत बद्ध किया गीत अभी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में मिस्टर एंड मिसेस 55 जो रिलीज हुई थी 1955 में इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मित्रों हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी और जब हमराही अच्छे हों तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। गुलशन बावरा की लिखी रचना थी मित्रों, मुकेश हेमलता की आवाजों का सुंदर जादू। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम विश्वास।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ उसी सजाई गीत था आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों जिसका नाम है वारिस साथियों अब एक खूबसूरत अदा लिए ये एक और गीत सुनते हैं जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है

दो दिल ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी की आवाज़ों का जादू था 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों हेमंत कुमार का संगीत था कैफी आज़मी की लिखी रचना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल रात्रि के 3:43 और 47 सेकंड हो चुके हैं कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे इस गीत की तरफ

0: मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों सुदर्शन का संगीत था और प्रेम वर्धवर्धनी का लिखा ये रचना थी माल रोड ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था वर्ष 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों और अब जागने की गुजारिश कर रहे ये किनको कर रहे क्यों कर रहे गीत सुन करके पता चलेगा
1: जागो अनजानी राज दुलारी ढल गया चंदा कटी रात सारी जागो अन

आरती मुखर्जी और सुबीर सिंह की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। बिजन पाल ने ये संगीत दिया था इस गीत में और रामजी सिंह ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम एक सूरत दो दिल। जी हाँ साथियों, एक सूरत दो दिल फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। 1968 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों।

साथियों, कोई भी मौसम हो उससे प्रभावित होती ही हैं हम, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। और इन दिनों तो गर्मी बरसात दोनों ही मौसम बिल्कुल चल रहे हैं, और खुशगवार और भी ज़्यादा मौसम हो जाता है जब सावन बरसता है। सावन के साथ साथ जब आगे मौसम बढ़ता है तो हर मौसम का कुछ इंतज़ार इस तरह रहता है कि सर्दी होगी तो ये करेंगे, गर्मी होगी तो ये करेंगे, बरसात होगी तो ये काम करेंगे। कुछ काम हमारे जो हैं मौसम पर भी निर्भर करते हैं, जी हाँ। लेकिन सावन का मज़ा अपना एक अलग ही होता है, और हाल ही में बहुत सारा सावन हमने गीतों के ज़रिए भी तो मनाया है, रोज़ बरोज़ मनाते हैं। फ़िलहाल सावन वाला गीत आपको बिल्कुल नहीं सुनवा रहे हैं, कोई और गीत सुनवा रहे हैं, मौसम की बात करता हुआ।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। चित्रगुप्त का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम बर्मा रोड, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।

चलेंगे गुनगुना के वफा के गीत गा के, संदेश पूर्ण प्यार भरा ये गीत अभी हमने सुना। मुकेश कृष्णा कल्ले की आवाजों से सजा ये गीत गहरा राज फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में। राज रविंदर का संगीत था, अख्तर रोमानी की लिखी रचना थी। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, समाचारों के बाद मिलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान

0: किया है जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की चार दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणाम वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कार की रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI नेट पर सम्मेलन होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said, there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the organization's 25th anniversary. The summit concluded with 13 key outcomes covering counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 4:11 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना, जिम्बो फाइंड्स अ सन, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1966 में। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, रात की जो हम सफर होती हैं, सुबह होते होते कुछ थकान भी जाहिर हो जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं हम सभी। जी हाँ, जैसे दिन में काम करते हैं उसी तरह से रात में भी ड्यूटी होती है हमारे कई साथियों की। जैसे हम भी इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे साथ भी कई साथी आकाशवाणी में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसी तरह का एक गीत जो कहता है कि रात के हम सफर थक के घर को चले, आइए आपको सुनवाते हैं।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब ये कौन आ गया, आइए सुनते हैं कौन आ गया।

सचिन देवबर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे हैं साहिर लुधियानवी की लिखी रचना आवाज गीता दत्त की फिल्म का नाम बाजी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। साथियों वाकई खुशी तो आ ही जाती है जब हम कहते हैं कौन आया वो आए वो मतलब मन के मीत आए। मन के मीत किसी भी तरह से हो सकते हैं जरूरी नहीं कि वो एक ही रिश्ता हो जीवन साथी का रिश्ता हो हमराही का रिश्ता हो दोस्त का रिश्ता भी हो सकता है कोई भी रिश्ता हो सकता है लेकिन हाँ अगर कोई प्रिय आता है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है मन में खुशी तो आ ही जाती है जैसे इनके आ रही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं वक्त फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म, रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। वाकई साथियों, जब कोई प्रिय नजर आ जाता है या ऐसा लगता है कि वो आने वाला है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि और जब वो आ जाते हैं तो हो सकता है वो कुछ कह दें, क्या कह दें, या दोनों मिलकर के कुछ कह दें। तो आइए सुनते हैं इसी गीत में, इसी गीत के साथ साथ इसके बाद ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना तकदीर फिल्म से। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर की आवाज से सजाया ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। और अब बढ़ते हैं एक और गीत की ओर। जी हाँ, उदासी छोड़ो, गम छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, मस्ती में आ जाओ, अपने कर्म की ओर बढ़ो।

किशोर कुमार भूपेंद्र सिंह की आवाजों से सजी ये रचना प्रेम पुजारी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था, नीरज की लिखी रचना थी। साथियों, हमारी जो पृथ्वी है हरी भरी वसुंधरा है, बहुत ही सुंदर है हर लिहाज से। जहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ, झरने, सब कुछ तो समाए हैं, सारी नज़ारे इसमें समाए हैं, चाहे वो हरियाली हो या कुछ भी। इस वसुंधरा को बचाने वास्ते हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं वही बस करने हैं, ज़रूर करते रहें उस तरह के प्रयास।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे हैं बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1967 में सतीश बत्रा का संगीत था भरत व्यास की लिखी रचना थी साथियों और अब ये गीत

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना हरे कांच की चूड़ियां फिल्म से 1967 रिलीज फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये रचना।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ वसी सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी शबाब फिल्म से 1954 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना और ये थी आज की अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति इसी गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए नमस्कार भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ मिलेंगे समाचारों के बाद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और समयबद्ध कार्य

0: योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का दूसरा चरण। कृषि और कल्याण किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के सिलसिले में यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंभा रोड सहित आसपास के अन्य मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दिल्ली में भी आज तेज बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the organization's 25th anniversary. The summit concluded with 13 key outcomes covering counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit focuses on 4 key areas, including the timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability, and Jal Jeevan Mission 2.0. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a roundtable in New Delhi on ease of doing business aimed at scaling India's data center ecosystem. In a social media post yesterday, he stated that the roundtable featured excellent discussions with key stakeholders including data centers, hyperscalers, cloud providers, power producers and equipment suppliers on streamlining regulations and strengthening digital infrastructure. The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. The ministry has informed that two Kanda Express consignments have been dispatched from Nasik as part of this initiative. It added that the first rake carrying 450 metric tons of onions reached Delhi and was subsequently distributed across Varanasi, Lucknow, Chandigarh and Amritsar and across the Delhi NCR region. Nepal's Prime Minister Balendra Shah has stated that the devastating flood that entered Rasuwa from Tibet last week via the Bhotekoshi River was caused by climate change. In a social media post, he cited a confirmed 1.8 degree temperature increase in the Himalayan region. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur, Chhattisgarh today. During his visit, the Vice President will attend the third convocation of AIIMS, Raipur. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the progress of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana PMDDKY at a meeting in New Delhi yesterday. The meeting focused on accelerating implementation of the scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance of farmers. The scheme focuses on six key objectives, which are increasing agricultural productivity, promoting crop diversification and sustainable agricultural practices, enhancing post-harvest storage capacity, improving irrigation infrastructure, enabling greater access to short and long-term agricultural credit, and improving governance and service delivery. A high-level delegation led by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will visit Goa today to strengthen the electoral process at the grassroots level. The two-day regional event at Ravindra Bhavan Margao includes an interaction with booth-level officers today to make elections more accessible, effective and transparent. And in badminton, India's leading shuttlers, including Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma, will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also lead India's challenge in men's doubles with Devika Sehag among the other Indians in action. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आपने सुनी वंदना फिल्म से। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, आसद भोपाली की लिखी रचना थी। साथियों, जीवन में संघर्ष कम नहीं होते। कभी किसी तरह का संघर्ष, कभी किसी तरह का तन मन और धन, तीनों तथ्यों से जुड़ा हुआ। लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है, बस मेहनत की करते रहिए, कर्म करते रहिए।

जी हाँ साथियों, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जिंदगी में परेशानियां उलझने आती ही रहती हैं, कभी सुख और कभी दुख, लेकिन रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। मेहनत से कभी नहीं डरना है और अपने को कमजोर कभी नहीं मानना है। जी हाँ, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। फिलहाल ये गीत आपने सुना बलबीर और मन्ना डे साथियों के स्वरों में, बंटवारा फिल्म से। 1961 रिलीज ये फिल्म रही थी। एस मदन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। और अब आइए गाते हैं, गुनगुनाते हैं इस गीत के संग संग में।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। फिल्म का नाम जानवर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। साथियों, और इस गीत के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत रचना की तरफ। जैसा कि कार्यक्रम है भोर सुहानी, उसी मुताबिक गीतों पर हम चल रहे हैं और समय अनुकूल जो गीत हम सुनते हैं उसमें सुनने में और भी आनंद आता है। आइए सुनते हैं ये शास्त्रीय राग आधारित रचना।